नमस्कार श्रोता मित्रों, मच्छरजन्य रोगों डेंग्यू मलेरिया अने चिकनगुनिया आना पर बात करिए। वरसाद आवे एटले पाणी भरावानी शक्यता वधे छे अने ज्यां पाणी भराय त्यां मच्छरोनो उपद्रव पण वधी शके छे। डेंग्यू मलेरिया अने चिकनगुनिया जेवा रोगों मच्छरो द्वारा फैलाई शके छे। आथी घरनी आसपास क्यांय पाणी भरायेलुं न रहेवा दो। कूलर कूंडा जूना टायर डब्बा के अन्य वासणों में पाणी भरायेलुं होय तो नियमित खाली करो। मच्छरदानीनो उपयोग करो अने जरूर होय त्यारे मच्छरथी बचवाना उपायो अपनावो। ताव साथे माथानो दुखावो, शरीरमां दुखावो, सांधामां दुखावो, खूब नबळाई अथवा अन्य असामान्य लक्षणों जणाय तो डॉक्टरनी सलाह लो। खास बात, मच्छरजन्य रोगों में पोतानी रीते दवा लेवाने बदले योग्य तबीबी सलाह लेवी महत्वपूर्ण छे। एक नानो नियम याद राखो, पाणी भरावा न दईए, मच्छरोने वधवा न दईए। तमारू घर स्वच्छ रहेशे तो परिवारनुं स्वास्थ्य पण सुरक्षित रहेशे। मळीए एक नानकडा विराम बाद।

पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
3: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
3: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गाँव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
3: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ाबम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ

0: पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
0: बनबकेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
1: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओं भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
0: मेघालय जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
1: श्रोताओं मेघालय यानी मेघों का घर
0: जी।
1: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है
0: जी।
1: खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
0: जी हाँ श्रोताओं, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
1: किसेन वानियांग एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
0: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
1: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है
0: जी।
1: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देखकर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
0: श्रोताओं कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि चार बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने दो रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
1: और किसेन ने श्रोताओं दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था
0: जी।
1: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
0: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
1: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
0: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
1: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया
0: जी।
1: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
0: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि चार बच्चों का जीवन बच गया।
1: श्रोताओं किसेन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है
0: जी।
1: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
0: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
1: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
0: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
1: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने चार बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती
0: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
1: तो श्रोताओ आज की कहानी से हम तीन बातों को जरूर याद रखें
0: जी।
1: तो पहली बात,
0: संकट में घबराएं नहीं।
1: दूसरी बात,
0: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
1: और तीसरी बात,
0: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम
0: जी। और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
1: तो श्रोताओ अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी
0: जी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन

0: में जाइए और टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
5: नहीं,
4: अरे
5: इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने

0: करवाई थी।
1: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
2: हाँ मेघा, दिखा देना नंदनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
3: प्लीज दिखा दो।
2: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं।
4: चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
2: चलो चलो चलो चलो चलो।
5: गुड मॉर्निंग मैडम।
6: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
5: बहुत अच्छी।
0: मैडम, मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
6: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
7: जी मैडम।
6: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
7: धन्यवाद मैडम।
6: क्या मिला पुरस्कार में?
7: जी
2: मैडम, आप ही कहते हैं इंतजार कर रही थी।
6: अच्छा,
2: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
6: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
7: लीजिए मैडम।
6: हाँ इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
4: अरे किताब भी ली है।
6: हाँ, शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
7: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
6: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
4: सैनिकों के बारे में।
2: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
6: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
7: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है, वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
6: अच्छा।
7: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
6: वाह,
0: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
6: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
7: बहादुर है हमारे सैनिक।
2: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
0: मुझे भी।
1: इसके बाद में
2: नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
7: हाँ हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
2: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
6: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
2: रास्ता है?
6: मेघा क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ, कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
7: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
6: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
7: जी मैडम।
5: गुड मॉर्निंग मैडम।
6: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
7: जी मैडम।
6: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
7: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
6: क्या बात है।
2: अच्छा मेघा, ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
7: बताती हूँ सुनो, परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
2: वाह।
6: अच्छा मेघा, क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
7: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
6: शाबाश।
7: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
2: मेघा ऐसा क्या किया था उन्होंने?
7: बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहां से शुरू करूं?

0: ओ मैडम जी।
1: जी मोहन भैया, क्या बात है? आ जाइए आ जाइए।
0: मैडम जी, आपसे कोई मिलने आए? कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
1: ओ हाँ हाँ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
0: ठीक है जी।
1: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना। हुँ?
2: जी मैडम।
3: मेघा, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
4: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
5: काश काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह,
6: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
7: मोहित, लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
1: चुप, एकदम शांत। बच्चों ये है मेजर अशोक।
8: नमस्ते सर।
9: नमस्ते बच्चों।
1: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
2: जी मैडम।
9: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है, आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
2: धन्यवाद सर।
8: धन्यवाद सर।
9: सबसे पहले तो मेघा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
2: धन्यवाद सर।
9: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
2: सर, मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
9: बिल्कुल ठीक। बच्चों, मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
1: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
9: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
8: एक हिंदुस्तान।
9: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे यह बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को यह नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई, हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
10: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
9: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद। दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक साथ हम

0: हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
1: शाबाश जांबाजू, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तालाब में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, ये चल।

0: दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है, लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए।
1: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
0: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है, लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
1: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
0: सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण गिर गए हैं, पर मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। फायर!
1: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
0: जवानों, आगे बढ़ो। एक दुश्मन बचना नहीं पाए। आगे बढ़ो। फायर!
1: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे।
0: बाला सिंह, मैं तुम्हारी वैक्सीन भरता हूँ। कीप ऑन फायरिंग, छोड़ना नहीं मोर्चा, कोई यहाँ से निकलेगा नहीं। हम एक-एक को मार के छोड़ेंगे। कीप ऑन फायरिंग।
1: उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भर आया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी, जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्युनिशन के भंडार पर आ गिरा। इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
1: जी
0: मैं आपका और खासतौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
1: जी,

0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
1: यस सर।
0: अच्छा अब मैं चलता हूं
2: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
1: जय।

पक्का पालन पूरी नहीं ओढ़ के इतने ट्यून रहे मस्त रहे सामर्थ्य रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: સુંદર અક્ષરે પેરેગ્રાફ લખીને પોસ્ટ કરો, વિજેતા બનીને જીતો આકર્ષક બ્રાન્ડેડ સ્માર્ટ વોચ અને કલર સર્ટિફિકેટ. મિસ્ટર કલ્પેશ પટેલ, માસ્ટર કેલિગ્રાફર, આર્ટિસ્ટ એન્ડ ટીચર, પાલનપુર બનાસકાંઠા, તેમજ વૈશાલી પટેલ કોમ્પિટિશન કોર્ડિનેટર દ્વારા આયોજિત ગુજરાત રાજ્ય કક્ષાની લેખન સ્પર્ધા મારા અક્ષર સૌથી સારા અક્ષર 2026. આ સ્પર્ધાની પ્રારંભ તારીખ છે 2 ઓક્ટોબર 2026, ગાંધી જયંતિ. પેરેગ્રાફ મોકલવાની છેલ્લી તારીખ છે 31 ઓક્ટોબર 2026, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જન્મ જયંતિ, જેનું રિઝલ્ટ આવશે 8 નવેમ્બર 2026. વધુ માહિતી માટે આપના વોટ્સએપ પરથી 9909488363 પર હાઈ મેસેજ કરીને મોકલો. તો ભૂલતા નહીં ગુજરાત રાજ્ય કક્ષાની લેખન સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાનું. મારા અક્ષર સૌથી સારા અક્ષર 2026.
1: जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है. रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ. और आज के इस एपिसोड में हम उन एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बगैर किसी स्टारी बैकग्राउंड के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी गॉडफादर के, खुद के बलबूते पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया है. वो सितारे जो सेल्फ मेड हैं और आज हिंदी सिनेमा को जिन पर गर्व है. सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी उस अभिनेता की जिन्होंने एंटरटेनमेंट को एक नया नाम दिया, जिनका मानना था कि नेशनलिज्म इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, और उन्होंने ये अपनी फिल्मों के साथ में दर्शाया. मैं बात कर रही हूँ मनोज कुमार जी की. वैसे मनोज कुमार जी का असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था. मनोज साहब ने काफ़ी ऐसी बॉलीवुड फिल्में दी हैं जो हमेशा याद रहेंगी, स्पेशली उपकार, क्रांति, शहीद, जहाँ पे उन्होंने देशभक्ति को प्रमोट किया. सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि डायरेक्शन में भी बहुत काबिल थे मनोज जी. इनफैक्ट उनका तो सपना था कि वो डायरेक्ट करें दिलीप कुमार जी को, और वो पूरा भी हुआ क्रांति फिल्म के साथ. अनडाउटेडली मनोज साहब ने अपनी फिल्मों के द्वारा बॉलीवुड में पेट्रियाटिज्म जिंदा रखा. ऑल्सो एक बार खबरें तो ऐसी भी आई थी कि धर्मेंद्र साहब बॉम्बे छोड़ करके चले जाना चाहते थे क्योंकि उनका लक ज़्यादा चल नहीं रहा था, लेकिन उस समय मनोज जी ही थे जिन्होंने उन्हें रोका और कहा कि अपनी स्ट्रगल को जारी रखें. मनोज कुमार जी की मेहनत के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, और चलिए अब मेहनत से बनाया हुआ हमारे मिस्टर भारत, इस नाम से भी जाने जाते थे वैसे मनोज जी, तो उन्हीं का गाना सुनते हैं अगली फिल्म से, लग जा गले गाना. वो कौन थी फिल्म से लता जी की आवाज़ में.

रफी साहब की आवाज में काला बाजार से था ये गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं हूं रुचि आपके साथ। आज जो गाने मैं आपको सुना रही हूँ वो कुछ ऐसे सितारों के हैं जो कि सेल्फ मेड स्टार्स हैं। वैसे कि आप जानते हैं फिल्म काला बाजार में मुगले आजम फिल्म का प्रीमियर दिखाया गया था और देव साहब का कैरेक्टर जो था वो ब्लैक मार्केटिंग करता है इस प्रीमियर शो के टिकट्स के। वैसे अपने टाइम के सुपरस्टार देव साहब को प्यार से चिरू भी बुलाया करते थे लोग। उनकी फैन फॉलोइंग तो आप जानते ही हैं कितनी रही होगी उस समय। आप क्या ये जानते हैं कि उन्हें पब्लिक में ब्लैक सूट पहनने से मना कर दिया था क्योंकि लड़कियां अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थीं और कहते थे कि कहीं कोई आपको देख के किसी खिड़की या बालकनी से जंप ना कर दे, इसलिए आप यूं कहर मत ढाइए। वैसे तो पहली बार एज अ लीड रोल उन्हें जिद्दी फिल्म में देखा गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें अपना पहला ब्रेक अशोक कुमार जी ने दिया था, वो भी यूं ही चलते फिरते। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था कि अशोक कुमार जी बॉम्बे टॉकीज के गार्डन में अपने दोस्त से कुछ डिस्कस कर रहे थे कि किसे कास्ट करना चाहिए उनकी फिल्म के लीड रोल के लिए, और तभी कोइंसिडेंटली देव साहब भी वहाँ मौजूद थे। फिर क्या था, उन्होंने देव साहब को देखा और उनकी फिल्म के लिए देव साहब को भी एज अ हीरो साइन कर लिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हर सक्सेसफुल इंसान की शुरुआत एक स्ट्रगल के साथ होती है। देव साहब ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था। एक्टिंग से पहले उन्होंने एक अकाउंटेंसी फर्म में एज अ क्लर्क काम किया था और उससे उन्हें सिर्फ कुछ 85 रुपये की सैलरी मिला करती थी। खैर, इतना स्ट्रगल किया उसके बाद ही तो वो इतने बड़े स्टार बन पाए, अ सेल्फ मेड स्टार देव साहब। उन्हीं की फिल्म से अगला गाना, गाइड फिल्म से अगला गाना आपको सुनाऊंगी मैं किशोरदा और लता जी की आवाज़ में, और कुछ देर के बाद आपको बताऊंगी कि कैसे एक नॉर्मल सा इंसान रवि कपूर बना सुपरस्टार जितेंद्र।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में था ये गाना कारवां फिल्म से, जितेंद्र साहब की ये फिल्म। मैं हूँ रुचि आपके साथ। वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर्स रहे हैं जितेंद्र जी अपने ज़माने में, है कि नहीं? नाम वैसे इनका रवि कपूर हुआ करता था और बॉलीवुड में इनके जिस तरह से एंट्री हुई उसकी कहानी भी बड़ी फिल्मी ही है। जी हाँ, जीतू जी ने तो सोचा भी नहीं था कि वो कभी एक्टिंग करेंगे। वो तो अपने माँ बाप के साथ में उन्हीं के प्रोफेशन, उन्हीं के बिजनेस में मदद किया करते थे। हुआ यूँ कि उनके पेरेंट्स इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस किया करते थे और एक दिन वो वी शांताराम जी से मिलने गए ज्वेलरी सप्लाई करने के लिए। शांताराम जी को ये क्यूट सा हैंडसम सा लड़का इतना पसंद आ गया कि उन्होंने जितेंद्र जी को नवरंग फिल्म का ऑफर दे दिया। जीतू जी ने भी मौके पर चौका मारा और वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे कुछ हुई हमारे जीतू जी के करियर की शुरुआत। और वो शांताराम जी ही थे जिन्होंने रवि कपूर का नाम बदल के जितेंद्र किया। आप तो जानते ही हैं कि जीतू जी हिमा जी से प्यार किया करते थे, जो भी कहो लाइकिंग तो थी उस समय, लेकिन बाजी मार ले गए धर्मपाजी। ऐसे धर्मेंद्र जी ने भी काफ़ी तरकीबें करी थी बॉलीवुड में आने के लिए। वो हमेशा से ही एक्टर बनना चाहते थे और वो उनकी माँ थी जिन्होंने सजेस्ट किया था धर्म जी को कि क्यों ना तुम एक रिक्वेस्ट लेटर लिख करके भेजो। तो उन्होंने फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट में अपनी फोटोज के साथ एक लेटर भेजा था एप्लीकेशन के साथ में। और बस किस्मत चल पड़ी, पंजाब से धर्मपाजी मुंबई आ गए, कॉम्पिटिशन जीत गए और फिर 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्होंने डेब्यू किया। आइए सुनते हैं धर्मपाजी की ही फिल्म लोफर का गाना, आज मौसम बड़ा बेईमान है।

मैं हूं रुचि आपके साथ। ये गाना था दिलीप कुमार जी की फिल्म मधुमती से। वैसे दिलीप साहब जैसे लिविंग लेजेंड जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है हिंदी सिनेमा में, उनके पास एक ज़माने में इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने घर से स्टूडियोज तक जा पाए। उस समय जो BCCI के प्रेसिडेंट हुआ करते थे PM रुंगता जी, उन्होंने दिलीप कुमार जी को बड़ा सपोर्ट किया था उस समय। ट्रैम के टिकट्स के पैसे भरना, बाकी कुछ यूं ही रोज़मर्रा के खर्चे के लिए पैसे देना, वो सभी मदद किया करते थे दिलीप साहब की जब वो एक स्ट्रगलर थे। लेकिन जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई, उन्होंने तो एक्टिंग को एक नया परिचय ही दे दिया। ही वॉज ट्रूली अ सेल्फ मेड स्टार। वैसे एक्टिंग के अलावा और किसी चीज़ के लिए अगर वो पॉपुलर थे तो वो थी उनकी लव स्टोरी सायरा बानू जी के साथ। लेकिन अगर आपको लगता है कि सायरा बानू जी की ज़िंदगी में सबसे पहले दिलीप साहब ही आए तो आप गलत हैं। सायरा जी और राजेंद्र कुमार जी भी बड़ी चर्चाओं में रहा करते थे। काफ़ी सारी मूवीज़ इन दोनों ने साथ में की थी, तो शूटिंग के दौरान दोनों में थोड़ा प्यार सा उमड़ गया था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त राजेंद्र जी ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनकी वाइफ ने सायरा जी की मम्मी नसीम बानू जी से कहा कि वो अपनी बेटी को राजेंद्र साहब से दूर रखें। फिर क्या था, नसीम जी ने दिलीप साहब से कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, वैसे भी आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो पसंद करते ही हैं। दिलीप साहब ने साफ मना कर दिया था क्योंकि सायरा जी उनसे 20 साल छोटी थी उम्र में। लेकिन नसीम बानू जी ने जैसे तैसे दिलीप साहब को कन्विंस कर ही लिया और कुछ ऐसे दिलीप साहब ने राजेंद्र साहब की शादी भी बचा ली। वैसे राजेंद्र जी भी एक सेल्फ मेड स्टार थे, बेहतरीन मूवीज दी हैं इन्होंने अपने समय में, और इन्हीं की फिल्म संगम से सुना रही हूं मैं आपको।

मस मोटा पड़कार निवातो, नानकड़ा निर्धार निवातो। दुनिया ने देखा ही नहीं पण क्या कोई है निरखेला अजवाड़ा ने अंधार निवातो। कहानियों में भजवेला बहु अलग अलग किरदार निवातो। तमें जो रहा छो बातो, बातो है संजय त्रिवेदी।

मैं घर से बाहर निकला सब मेरा नाम पुकारे, मार के लाठी जमीन पे जटने डाकुओं को ललकारा, वो थे चार अकेला मैं।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।